हे अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

के भजन करो हरि जगत करतारे, भजन करो हरि जगत।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली।

यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया,

0: गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। मुनि जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ। मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही

मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू भोलू मुन्नू नई नई चीजें

0: खाने से मना कर देता हूँ। मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं।

0: कुछ सब्जियाँ और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, हरा धनिया, मिर्च, बड़ा मजा आ रहा है। भेलपुरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपुरी, अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपुरी।
1: कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपुरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
1: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
1: रुको रुको, सोचने दो।
3: रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान।
1: आ गया समझ। चमकी, मैं बताऊं?
2: अरे गुगी, अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
1: चमकी, अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
1: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
1: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने।

0: और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
1: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
2: अब्दुल रहमान।
1: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्त कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय
7: बाय।
0: मजा आया ना।

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। भाई बात क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़ भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती है, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी

0: पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते कुछ लोग
1: जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियाँ खिला सकते हैं?
0: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर पनीर से पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
0: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बेवारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें वो जगह को घुमा देवे। एक कथे है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के वो जगह पे पहुंच गए और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चला थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं कर रहे थे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर करवे चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार है।

0: रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी।
2: श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर, माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
3: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट था फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है, उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसके कोच बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो इसे

0: शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ सात झरने हैं, सात झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन में, 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
0: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं। जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही, और जन्म कोटि अघनासे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 22 से 51 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी जी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं, या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक, पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है, और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।

0: अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व तो बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे हैं।
1: तो आप उन्हें यही के हो?
2: यही के हैं।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेख हैं ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहे चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है, और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें, और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है, यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी नाश्ता।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है?
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। और वो जो है किराए पे, ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखिए, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा,
2: उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का, सो सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धनकुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद ही आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गाँव की कोई विशेषता है, आपके गाँव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9-4-2-5-1-4-1-7-2-6। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी को लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कोते राजन की कुमार
2: आओ
1: और एक हते बाणिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हते राजा के कुंवर
1: एक हते बाणिया के।
2: हाँ जो दो जने हो गए। हाँ
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन खो चले जा गए।
2: दो ही के दो
1: शिकार भी अपनो घूरो मस्के भी अपनो घूरो मस्के।
2: हाँ
1: अब जब वन में पहुंच गए
2: तो
1: जा शिकार खेली बा शिकार खेली खेल खाल के अपने घर पहुंच गए।
2: हाँ
1: अब कल को दिन बरसीत ने फिर कर गया।
2: अच्छा
1: तो कल के दिन में भी बोले कल ले बीरन बोले अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे थे। अब राजन को तो बस बीरन थे अपने बानिया कितना से कद बीरन।
2: अच्छा
1: ओ, भी है बादशाह।

0: राजन के बादशाह के बनने तो बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले कब बोले कर ले कही राजन के राजा बोले कर ले बीजन तो जा रो ससुराल है हमारा हम कितने चले जावे अरे बोले कर ले राजन के राजा आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं है।
1: अच्छा
0: हाँ तो बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
1: अच्छा
0: नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस सब चले ससुराल के लाने तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीजन की ससुराल को गल गई और जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
1: अच्छा
0: गली में से बटी लगी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी तो बीरन गौ पानी पीवी के लाने तो बानी बीजक बाँचो।
1: अच्छा
0: बीजक बाँचो वामे सू में गलियां अलग अलग बीरन हो बदमाश बीरन बदमाश हो।
1: अच्छा
0: तो बीरन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावरी में वह बीजक खून भरा दो
1: ले उसका
0: अगर हमारे आ गए जब बीजक खून जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जब बाचे ले से संग छूट गो इसे कह हमारे जी ससारे चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीनों जने हाँ जा तो बीजन बदमाशी के रहो तो बस अब राजा पानी पी गए गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी सुबह में बीजक में गिराव लगो रहे तो राजन ने अपने खोबन की उली चुलीच के भाई
1: धुदाओ
0: और फिर उगे बाँचो बाँचो भाई सुबह ने उन्हें प्रधान पूरा लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जा बीरन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो बोले कर ले तुम बीरन बोले ये राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कर ले पुरखन को बीजक ने मिटा दिया है हट कर ले कि हम अपनी ससुराल देते तो बोले कल उनकी शर्तें लग गई।
1: अच्छा
0: बोले कल जो पहले आगे विदा करा के वो जिस बाउरी पे ठहरे क्या जिन किसी को बीत जाए
1: सही
0: सही तो बस अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी सताई रखा नाउ बोले कल जी राजन के संगे चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं तो राजन की कुमार और सताई का कद्दू जने जा रहे बीरन अपनी ससुराल चले गए। अब साहब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंची तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास बोले कर ले सताई का बोले कर ले ये राजन के राजा कर ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कर राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी अपन वन में हेंगे बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना गा के बोले कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी सुबह पे देख के भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रही तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जल्दी हो गया उसे बोले कल चल चल ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी अरे खुली जाए सुबह जन्म दया पाई खुली से जीत गए कि हाँ बाहर आराम से बिन्नगर चली गए तो उत्तर का किस्सा है तो जोनवर लड़की राजन को ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी।
1: अच्छा
0: उन नदिया में स्नान कर रही थी तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए बोले कल सुताई अक्का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल ले उस तालाब में पानी है सो ठीक है तुम ले आया बोले कल ले महाराज जाकी ना पूछो पानी पी लो तुम तो बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले

0: बात है क्या, क्यों पानी जो मचो लिया होते ऐसा जल्दी होते कि मचो सचो भर के आ गए। बोले कल महाराज कल तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही है तो उसके साथ हमारे मूल चाचा के गिर पड़ी तो हम तो साहब मचो सचो भर लिया वो हम खुद की आशा मर जा रहे। अरे बोले कल बगरा गई तो वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूर है जब बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नागपत्ता ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
0: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा उनने फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ढाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: जो नहा रही बा बोल रही है

0: चाहे आपका बोले कल्ला राजनीति राजा
1: हाँ।
0: सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: हैं?
1: सही
0: बोले कल्ला नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे
1: हाँ।
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ।
0: भूले वो सा

0: गलियाएं लेखो बाता दियो रे सो लगे काहू के अरे द्वार दी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे में
1: आप पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते अगर बता दीजिए। अब बस जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए। इनको बदन शरीर है कैसा? मुंह करने मायक है और पूछ करें इंतायक है। कई के अब ऐसे बताया तो निकल बाल माँ से बाप बोली।

0: या बात मिल जाओ।
1: अच्छा
0: हाँ माने मिली ना बताई न बाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पास अभी कर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही ली।
1: हाँ।
0: गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ गाँव की लाने तैयार हो। अब बाने सोची के जे मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जो बाने जल्दी पल्ली सफरो सफर खूर के और बाप ने जेल चली जो ये हती से जात भवन द्वार का को देखो तो ससरा सुबह द्वार उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुबह घरवाओं को बंधो अब भाभी से बोली भी

0: बिल्कुल क्या तुम
1: दबा भी नहीं थे ऊंचे कनेरा नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चालन
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दे के लाने तैयारी के लिए तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
0: अच्छा
1: बोली कर लगे हो अपन को कगुआ गेल कुमार बनाए थी
0: हाँ बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसकी
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अब नहीं खुलो
0: हाँ
1: में तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की तो वैसा वती सुनने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना और अज्ञा दे दी भोजन के लाना तो दोनों जने भोजन खो गए भोजन खो गए साफ सुनने चाहे एक ले चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना ठना ना जवाब ठोको
0: अच्छा
1: ठोकने ठोकने ना तो भेज कैसे खुलेगा
0: सही है।

0: जी तो उनने टाठी सरका के माए कच्ची अब अभी खुलवाओ के जई है जी।
1: सही कह रहे
0: जब बात
1: आई के होते
0: जई है जब बाबा ने बात खोली तो बोले समझ गए तो उनने माए टाठी माठी सरका के ओ बस सुता जा काने पर झटपट जो कछु राजन के जी जो बाप बांधी ओ बाप नी बांधी ओ बस टाठी माठी जो कर क्या मेरे बाप के कर ले काहे काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज मैंने अपनी टाठी धोई वो आपकी धोई और फिर मैं
1: आया
0: बोले कल सुन ले कल सुत्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो ये इस पापन को मिलवा जाना इसको मिलवा जाना तैयार हो गए जहाँ से करा उनको और उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पले चवन पीटने कस रहा
1: अच्छा
0: वो पले चा पीटने के तन दिन तो होंगे आगे बड़ी आगे
1: ये मैं भी दे रहा
0: ये भी दे रहा था कि कैसे जो सवेरे भाव जाए तो बस जो राजन को हाँ साफ कल भी हो गए तो राजा का कल क्या है जो ऊपर का पले चा नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे अमते बेसु निकल के ओ बस फिर कड़ी तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा दाऊ बने रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे

0: नहीं देखो रिश्तेदारी है
1: सही है
0: वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुबह में गांठ पर
1: गांठ पर जाए
0: गांठ पर ये जाओ मैं सुबह नहीं गए उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: पड़ोस की ने कही जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: बोल भर के जाओ तो उनने हतीसो जैसे कछु पुटिया पर मुद की वही रानास में ले गए
1: फिर कमाई खोल पाड़िया ले गए
0: मई खो वही जहाँ उनकी रानास हती फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा थाली जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मूर भूल गई बन गई और असम दुहा दे रही संकुबा।

0: यशो का कारण तुम्हें पेपर हो यशो पोची छाजने ओ रजी। अब बाप नंदी सुन रही थी
1: अच्छा
0: वो दुहा, तो नंदी ने कही, अब

अरे भोरे जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खाओ, इसे तुम बोलना। बाने खरीदो जाकर।

0: इस शंख बजे से साधु जगे बम घले राजपूत, अगर इतने में ते बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे।
1: सही है, है? का हो रहा
0: का हो रहा
1: कत्ते दुनिया भगत जाए विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो पड़ोस में पतो होगा, रानी राजा के पास मिल भी गई। अब फिर की दो कह रही है ऐसी।

0: সে লড়কি ভালি এসো মেরি পে বিয়াজি।
1: আরে এসি সাসো কা কাম কি আছে তেরি কুখন বাঁজাই হো জাতি। ও এসি সপুত যায় কে লড়কি হোতি তো পরোস মিড়ি পে বিয়াহ শাদি কর দিতি। তো বলতি যে তো গড়িয়া হে না আটা সুবা পটক থার ও গই ভাগিয়া। जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मेरी भी अब रात को समझ गया कहाँ जा रहे जो सबीर हो सो उन्हें घूरो मस्को उस चले गए। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुराओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी विदा कर। ठीक है जो भाई बिहार से डट गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीना सुनने सजाई तो घूमे बिदा उनकी। कई बार उनमें खाना पीना सब और महीना भर के जाने रखता खा पी के घरे चलेगी। बस आओ अब बिहती सो अब पीना हकावे बारे हती तो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई तो भी भग गए छोड़ के। अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल है खबाजी ने हकाई सुबह हका के हो वह सब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पुल हो रहे से उतरे बस गए। शाम हो गई से बस गए बस के लिए अब बोले कर ले सुनो सुता का बोले कर ले का कर ले पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है। अब बस सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने गई के ठीक है सुताई अक्का से गई के सुताई अक्का ऑर्डर दौरानी है के पति लगाओ। सुताई अक्का गए से तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को। चौबे ये तीन पात में कहा खुल जाओ बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमाए रानी की फार के मार पातस लग के आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोए। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का कहें जी सुबह घोड़े की पछाई की जो ये रहती एड़ बजट बात बडोर बजी थी तो बस छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडोर को कि ये भगे तो जब ये टूटे समय यहाँ का गए हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू के ले। सुबह सुनने थी सुबह घोरो भंसाई राज भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बार दूर कहीं दूर सो नेक चावा को अठो को घोरी में सुबह दूर पीती सो उनने कही होते हैं रानी ने

0: मैं कर गई चुपचाप बैठी रहा दरबार में भगियान।
1: एक
0: जना तो बोले क्या के पहुंचे जैसे राजा ने कही बोले कल ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कल ले के देखिए सुनिए। फिर बार लड़की की शादी करी उन्होंने उनकी रानी होने दे हती बात तो हो गई।
2: देखो दोस्तों जा तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

सुनो तो जी काकेरे, अपन खाजी बताए अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे।

0: रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौनसो कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करे और सुने, और यही क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करे और जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सम बताओ है, और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करत हैं राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कहाँ के रहे विवाह दादा?
2: केना के पूरा पटक ग्राम केना जिला की गमगा तहसील नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा कहाँ करे तरफ?
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने ढो बच्चे देखे ना तरफ।
1: और
2: क्या वर्कर हम क्या बस किए काम वाम हम कह तुमने कर।
1: आप अपने परिवार वाहन से कहाँ के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से कहाँ जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं लगत और क्या परेशानी दिखते हैं आती है अपन का
2: बुढ़ापे के? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ नींद नहीं पाओ घूरे फिरा हर एक बात की मुश्किल दिखा दो।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो भी हमें ले आया हम खा रहे हैं।
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी आओ।
2: आओ बैठ जाओ जी यहाँ से पूछा थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने हैं।
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा देंगे जी।

0: ऐसे जब
1: दिक्कत है उनको अपन कैसे झेल सका था का कह सका
0: आप झेल सका मतलब बैठबो है सीधी बात है पैसा जो खाए तो चाहिए अरे कछु ना कछु ना तो 10-15 उसको तो खर्च किया आदमी को वहाँ मान के चलो कछु ना कछु वो 10 तो उठा के चल जाते
1: तन भाई आपको कैसे कटत
0: मेरा ढोर बच्ची उनता दिमाग लगा दे सिजारे सिजारे अपने छाने में चल बस
1: अच्छा वो अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी
0: हाँ
1: जैसे का आप बुढ़ापे की
0: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कत है आदमी का
0: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पाए हम मतलब और उसी ने दिखा तगड़ा नहीं बांस पाऊ मुझे दिखा सगड़े
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सका तो खावे पीवे की आपकी का
0: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं आ रही मतलब जो घर में है तो खा
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में वावे की में का अंतर है
0: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत इज्जत नहीं आया और पापा जाना फैली अरे बाबा जी जाया फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे को मिल जाए दूसरे की जठानी न मिल गए दीवानी न मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
0: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कभी आपत्ति नहीं आए प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कभी आपत्ति न आए
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
0: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में ओवर का जो काम नहीं था प्रेम में मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पैसा टका खर्च ना हो
0: जाए घरे पैसा रहे मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करे चाची और कैसे रहे चाची आपका कंचाओ सब जनन से आपको काके वो है
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करे
1: तो वही बात बड़ी बात मतलब शुरू से आप बताओ
0: यात्रा ना कछी
1: हाँ यही बात है आप यही बात पूछन चाहो शुरू से बता दो आप आप काके वो चाहते
0: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान उनको माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की रूप है जो बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो पूरी मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं करते जा कर है जो मतलब है जब कहते चले जाओ ये पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाता तो कहाँ जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है
1: और का के वो चाहूँ आप
0: जी चाहू के आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को संभाल खाने दीवे 300-400 महीना मिले दिए तो अपने में खाद चलाओ
1: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखबे चारों धाम करें और भैया ये तो बातें अपनी अबे हती सो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुने।

हाँ तो भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया, अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम? सुनो जी काकेर है, ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं। और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आउत है ये कार्यक्रम को। सुनो जी काकेर है, अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत होवे तो हमें जरूर बतावें।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो तो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं?
2: दीनदयाल बोल रहे हैं सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया, दीनदयाल भैया हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप ऐसे फोन लगा उतरा बुकर है।
2: ठीक है सर,
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, ऊपर वाले की कृपा है, और सब बहुने बहुने हो गई, पानी आने लगो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो? प्रियंका
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ,
0: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
1: एक गीत कोई गाओ तो सुना दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा चलो
1: बोल
0: ठीक,
1: तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए हैं।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।
2: लाल दुपट्टा उड़ गए मेरी हवा के,

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो क्या एक बार

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सक जाने त्रिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

रंग लाल है, बिंदिया भाल है, कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराजी गोरा।

0: फूल शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम
1: चला। हेलो
2: हेलो, बुंदेलखंड नंबर 1950 है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाव से सतीश साहू जी?
2: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
2: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
2: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए हैं।
2: ओके सर,
1: नमस्कार भैया जी।
2: नमस्ते।
0: कचहरी।

0: हेलो माता जी भैया को नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
1: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
0: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें से वो वाला भजन सुना दीजिए।
0: कौन सा?
1: साथे मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
0: जी,
1: वही वाला सुना दीजिए।
0: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनाते हैं।
1: धन्यवाद भैया आपका।
0: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
1: ठीक है,
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

हो गया हूँ दीवाना, गलियों गलियों फिरता हूँ, हो गया हूँ दीवाना, गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से? जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: ये बात सत्य है, नारियां देवी का रूप होती है, ये बात सत्य है।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा में पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और काय ना।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा में पुजारी हूँ।

0: है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे भूल लगो बताए कैसे यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना
0: कल तलक तुम्हारा

और जब पूछना कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो कब बोले

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, हमारा वक्त हो चुका है फरमाइशी कार्यक्रम का, और फरमाइशी कार्यक्रम जैसे हम शुरुआत करते हैं वैसे ही हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कौन बोल रहे हैं?
1: जी भैया, योगेश भैया छत्तीसगढ़ से।
0: जी भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया जी, अच्छा
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: फिल्म है जंजीर।
0: जंजीर फिल्म,
1: अरिजीत के बोल है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।
0: यारी है ईमान
1: जी,
0: यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। और सब बढ़िया है?
1: सब ठीक है भैया।
0: वारिस भाई सो रहे कि नहीं?
1: नहीं हो रहा है भैया।
0: नहीं हो रहा?
1: बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक हफ्ता हो गया।
0: अच्छा
1: जी,
0: चलो आपको सुनवाते हैं आपके पसंद को जो गीत।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मनीष जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा से करता हूँ आपको सादर नमस्कार।
0: सादर, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई साहब आपके?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और बुंदेलखंड ओरछा को सुन रहा हूँ। आपकी जो ओपनिंग सॉन्ग है, जारी है,

0: मान मेरा यार मेरी जिंदगी योगेश जांगड़े ने सुनाया, और ये बहुत ही अपने जमाने का एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध गाना रहा है, काफी पॉपुलर रहा है।
1: जी जी जी जी बिल्कुल रहा है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
0: सबसे पहले मैं आपको बुंदेलखंड ओरछा परिवार को और सभी श्रोताओं को आने वाली गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज? फरमाइशी
0: मान्यवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी
1: जी,
0: और गीत के बोल हैं, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।
1: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर।
0: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। शाबाश, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे।

0: नमस्ते सर जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कळमनुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात करें सर जी। बहुत ही बढ़िया है। अभी यही तो खेत में है, भैंसा चरा रहे हैं तो आराम से गीत भी सुन रहे हैं। शायद लगाना बोला फोन तो एक ही बार लगा तो लग गया।
1: बिल्कुल बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज की फरमाइशी कार्यक्रम में।
0: आज का गीत है 20 साल बाद मोहम्मद आजिज की आवाज है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
1: बहुत पुराना, आपने 1989 में ये फिल्म आई थी।
0: हाँ सर जी,
1: चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: थैंक यू, धन्यवाद सर जी,
1: धन्यवाद।

0: हाँ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: भाई साहब राम राम, राजेश का बोल रहे।
0: राजेश भैया राम राम, का हाल चाल है अपने?
1: बढ़िया है भाई साहब। पानी मिल गया चार पाँच दिन से?
0: पानी कितना नहीं गिर रहा महाराष्ट्र तरफ?
1: तो हमारे बगल पे गिर रहा, 1 किलोमीटर आगे कपड़ा वहाँ है ना, बांध मेरे बांध के पास।
0: अच्छा
1: हाँ, परसों रात नहीं गिरेगी, काफी पानी बहाव होगा।
0: अच्छा भी नहीं गिर रहा पानी। और बताओ कौन से गीत सुनने आए?
1: आज तो सावन आया बादल छाए।
0: सावन आया बादल छाए, और सब बढ़िया?
1: सब बढ़िया भाई है। दुकान में बैठे थे?
0: हाँ
1: मूंगफलियाँ दबाई हो जा रही
0: है। हाँ मूंगफली अच्छी जम गई,
1: बढ़िया है मूंगफली। घंटा हो जाने आओ तो लाखो काम कम कम काम।
0: अच्छा चलो बढ़िया है। सुनो आपके पसंद को जो गीत अपनो
1: भाई साहब। राम राम
0: राम राम भाई से जय श्री राम।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार महेश भैया, मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ बनारस से।
0: बनारस से बाबू यादव
1: जी? भैया
0: जी। भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके?
1: नमस्कार भैया, हाल चाल बढ़िया हो और आपका क्या हाल चाल हो?
0: एकदम बढ़िया है, आपकी फरमाइशों को सुना रहे हैं, बस यही काम है हमारा।
1: जी भैया, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो भाई, पानी बरसा था।
0: बताओ अपने बनारस में पानी बरसवा रहा है, बुंदेलखंड में पानी?
1: अरे यहाँ बाबा विश्वनाथ जी कृपा, हम तक आपके हृदय भेज दे बाबा जी।
0: बिल्कुल, बाबा जी से बोल दो आपके इतने भी कृपा कर दो तो ना। बताओ कौन सा गीत सुनो
1: आज? मनीष भैया हमें जुर्माना फिल्म का गाना सुनवा था और उसकी सजन सावन में। सावन के झूले पड़े तुम चले आओ,
0: सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, जुर्माना
1: आई
0: थी ये।
1: हाँ,
0: चलो आपको सुनवा रहा है आपके पसंद को जोगी।
1: नमस्कार मनीष भैया।
0: नमस्कार।

0: सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर नमस्कार, आदाब और सत श्रीकाल। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद सुकुलपुरा बनारस से आपसे मुखातिब हो गया हूँ सर।
0: जी नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। पहली बार जुड़े सर आप?
1: जी सर।
0: पहली बार जुड़े क्या आप?
1: जी जी सर, आप हमारे फ्रेंड हैं, वो नंबर दिए, हम आपके यहाँ पहली बार जुड़े हैं सर बुंदेलखंड में। और सर हमारे दोस्त हैं राजू यादव जी हमीरपुर बुंदेलखंड से, और अनुप जी हमारे सब लोग दोस्त हैं, लेकिन आज पहली बार हम आपके यहाँ जुड़ रहे हैं सर।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है सर, फोन में कोई दिक्कत नहीं आई सर, फोन मिल गया, लगाए तुरंत बात हो रही है आपसे। जी सर
0: बताइए कौन सा गीत सुनो आज?
1: आज सर हम सुनेंगे कि गीत का बोल है लैला मैं लैला मैं ऐसी हूँ लैला।
0: अच्छा नई फिल्म है या?
1: जी पुरानी सर,

0: फिल्म है, इसी का गाना है, पुराना वाला ही सुनना है।
1: लैला में लैला।
0: हाँ, लैला मैं लैला, ऐसी हूँ मैं लैला जी। तो कुछ दोस्तों की इजाजत रहती है क्या सर नाम लेने की? तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है।
0: सर आप रहेंगे और बुंदेलखंड के जितने रेडियो, बुंदेलखंड के जितने आरजे लोग हैं वो रहेंगे। हमारे वहीं से राजू यादव उर्फ रामपाल यादव जी बुंदेलखंड हमीरपुर से,
1: जी
0: अनूप सिंह जी, ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा जी,
1: जी
0: और हमारे जितने भी रेडियो सुनने वाले दोस्त हैं सबको ये गाने में डेडिकेट रहेंगे सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आपके पसंद का ये गीत सर।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी भैया, क्या हाल चाल है आपके? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: स्वस्थ है,
0: बहुत बढ़िया। पानी वानी नहीं कर रहा हो? बिल्कुल, बताओ कौन सा गीत सुनो? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपने बहुत अच्छे गीत को पसंद करो, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद को वो गीत।
1: नमस्कार।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार,
0: जी सर नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके?
1: बस ठीक ठाक ही बैठे हुए थे,
0: अच्छा बताइए कौन सा गीत सुनेंगे? तड़ी पार, उसके गीत
1: आपसे दुश्मनी कबूल मुझे,
0: आपसे दुश्मनी कबूल मुझे, और सब बढ़िया है?
1: सब ठीक ठाक है।
0: चलो
1: बारिश
0: कछु नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही, अब चार पांच दिन से हो ही नहीं रही। वही तो कहीं नहीं बरस रहा, उसे बनारस में पानी गिर रहा। हाँ वहीं पे गिर रहा। पता नहीं अब मौसम विभाग बता तो रहा है पानी है दो तीन दिन बाद, पता नहीं कब है। हाँ चलो सुनवाते हैं आपके पसंद को जो गीत भाई साहब।

0: करते हैं एक और साथी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है।
1: हेलो
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं भावनगर से अटल बात कर रहा हूँ। कैसे हो सर?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर?
1: मैं एकदम स्वस्थ हूँ और आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, खुशी हो रही है आपसे बात करने में। बताइए सुनेंगे आज? आज कौन सा गीत सुनाएंगे फरमाइशी कार्यक्रम में? कौन सा गीत सुनाएंगे? अच्छा चलो भाई साहब, और सब बढ़िया है?
1: दो महीने बाद
0: बहुत समझदार हैं सर, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल सर, ये आपका बड़ापन है, आपका स्नेह है, प्यार है, ये हमें बहुत खुशी होती है सर।
1: अभी जो चलिए
0: सर, जुड़े रहिएगा, हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा, सुनवाते आपके पसंद का ये गीत सर।
1: शुक्रिया।

बहाना, मैं जाते गमला पट।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। और कप्ताएं कार्यक्रम में अपन आज सुने कुमार विश्वास जी की लिखी भाई कप्तान को। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ देर न करत भय सुनते हैं अपन।

एक कविता को जिगे कुमार विश्वास जी लिख रहे हैं कि उनकी खैरो खबर नहीं मिलती, उनकी खैरो खबर नहीं मिलती, हमको ही खासकर नहीं मिलती, शायरी को नजर नहीं मिलती, शायरी को नजर नहीं मिलती, मुझको तो ही अगर नहीं मिलती, रूह में दिल में जिस्म में दुनिया में ढूंढता हूं मगर

तो दोस्तों अपन ऐसी कप्तान आनंद ही सुने और कप्तान को आनंद लें। दोस्तों यही क्रम में कारण अपन एक बढ़िया से गीत को सुन लें और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। सो आ दोस्तों सुनते ही बढ़िया से गीत को, जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी।

बिल्कुल दोस्तों, राम नाम केबु करे धरे रहो मन धीर, ओ कारज दे समार है सु कृपा संग रघुवीर। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया राजकुमार त्यागी जी और अमोल अहरवाल जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाऊ थे, और कार्यक्रम में जो अपन कप्तान को सुनने थे सो कप्ता को सुना थे, जब कप्ता लिखी है कुमार विश्वास जी ने। सो दोस्तों आओ उनकी अब दूसरी कप्ता को अपन सुनते हैं। कुछ छोटे सपनों के बादले, कुछ छोटे

सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुद जवानी, हर मुहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने का गाना, हार जीत तय करती है वो, आज कौन से घर ठहरेगी। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डहर ठहरेंगे। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होंठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लालच बहाने, जिनकी जिद के आगे सूरज मोरपंख से छाया मांगी, उनके भी दुर्मय इरादे दुनिया के स्वर पर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो देखो कितनी बढ़िया जो कविता जो अपन ने सुनी है, एक कविता को लिखी है थी कुमार विश्वास जी ने। सो आओ दोस्तों, अब कुमार विश्वास जी की ये कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं और वो कविता को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आप ऐसी बने रहो अपने रेडियो माता दीन के संग में। अब देखो कुमार विश्वास जी का लिख रहे कि खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, हम पर एहसान कर रही हो ना, जिंदगी हसरतों की मैयत है, जिंदगी हसरतों की मैयत है, फिर भी अरमान कर रही हो ना, नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही है ना। जी हाँ दोस्तों, तो नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही हो ना, हमने समझा ये प्यार पर तुम तो जान पहचान कर रही हो ना। देखो कितनी बढ़िया कविता जाबिया जी ने लिखी है कुमार विश्वास जी ने, और एक कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं। सो दोस्तों, आप और ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। अब देखो भैया जी अपनी अगली कविता में का लिख रहे कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ, जब भी मुंह ढक लेता हूँ, तो देखो आगे का लिख रहे, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरे जुल्फों के छाव में, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। बहुत अच्छी बात, तो कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में, एक गीत पलकों पर लिखना, आहा, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होंठों पर लिखना, यानी सारी गीत हृदय की, यानी सारी गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना, जैसे चुभ जाता है कोई कांटा नंगे पांव में, ऐसे गीत उतर जाते हैं मेरे मन के गांव में। पलकें बंद हुई तो जैसे, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन मन सो गए हो, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन मन सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए, जैसे धूप चुनरिया ओढ़ आ बैठी छांव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। तो देखो दोस्तों, भैया जी कितनी बढ़िया कविता लिख रहे हैं और इन कविता को अपन सुनने हैं, और एक क्रम में उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो देखो अब भैया जी आगे का लिख रहे कि जाने कौन नगर ठहरेंगे, जाने कौन नगर ठहरेंगे, कुछ छोटे सपनों की खातिर, कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन नगर ठहरेंगे, वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी। देखो भैया जी ने बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं और कप्तान के संगे संगे अपन
रहे हैं कि माता दिन भैया आप केवल कप्तान की धुन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। तो दोस्तों आओ एक और कप्ताखों सुनबे के बाद फिर अपन मनोरंजन की ओर चलें और मनोरंजन में सुने अपन बढ़िया से गीत खो और गीत को आनंद लें। तो देखो अब भैया जी कुमार विश्वास जी आगे का लिख रहे हैं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल ऐसा एक तारा है, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल एक ऐसा तारा है जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। जो धरती से अंबर जोड़े, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है। जो शीशे से पत्थर तोड़े, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र मगर, बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। पनाहों में जो आया है, पनाहों में जो आया है तो उस पर बार क्या करना, पनाहों में जो आया हो तो उस पर बार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पर फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसमा कसमें है, जो भी मालूम गहराई तो दरिया पर क्या करना। जो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। बस्ती बस्ती घोर उदासी, बस्ती बस्ती घोर उदासी पर्वत पर्वत खालीपन। मन हीरा बेमूल बिक गया घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। एक तो तेरा भुलापन है, एक मेरा दीवानापन। अब देखो ये आगे का लिख रहे कि तुम्हारे पास हूं लेकिन, तुम्हारे पास हूं लेकिन जो दूरी है समझाता हूं। तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझाता हूं। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्ही को भूलना सबसे जरूरी है समझता हूं। बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बस नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। देखो कितनी प्यारी बात भैया जी ने लिखी है। सो अब दोस्तों देखो आपने कह रही है कि माता दिन भैया ब्लड टीम से कप्तान में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो आप सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत खो और गीत को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, दुनिया में तो आकर भूला ईश्वर की डगरिया। देखो कितना प्यार जोगी तपन सब जन ने सुनो है गीत को, आनंद लो है ये गीत को गा रहे थे भैया राजेंद्र सिंह जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम कप्तान में आप सब जन को जी कप्ताएं कैसी लगी। अब दोस्तों जो कप्ताएं कार्यक्रम आप सब जन ने सुनो ही कप्ता कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो रहा है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूँ आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खासतौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरू भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरू भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी बता कहाँ बात है?
0: कहाँ बात है लालाजू, आप तो बड़े आराम से बोल रहे।
1: नहीं भाजी अब तो न आराम से बोले सो भाई बात।
0: का कह रहे ने कठिया के बोलो सो भाई बात।
1: अरे भौजी तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए भौजी से बैसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू मैं जाके अभी आई थी कि मैं तुम मेरे संग में चलू।
1: तुम्हारे संग में चलू?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने तो।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ये सब काहे थे हारे के हम हारे चले थे?
0: अरे लालाजू मैं कह रही तो समझ लो जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी अभी हम
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ ले जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी का बात है बता नहीं बता दे तो।
0: का कह रहे लालाजू नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा भौजी के ऐसी का बात है तो ही बता दे हारे जावे की क्या जरूरत है।
0: अरे लालाजू अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे अच्छी सी बता दूं मैं कहाँ डाल लूं ई खेतन में मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं जे दवाई ले आत होंगी लेकिन इनसे कहा कोती मुझे कुछ फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है वो और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई आत हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो काय में लगी हमारा नाम के
0: भी। अरे लाला जी फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी तुम्हें कछु नहीं ना होगा।
1: अरे आओ तो है नहीं लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना देती एक बात है।
0: अच्छा मैं तुम्हारी चलो मैं तुम्हारी खेती देखी आज तुम्हारी कैसी है।
1: हाँ मैं देखा हम तो दवाई दे दी अपनी चल रही है आजकल भी
0: दे दवाई देते ही
1: चलो देखे तो
0: चलो चलो तो पहले तुम्हारी खेती देखे आप फिर मैं अपनी देखो।
1: तो देख भाजी देख जा अभी आसू की अपनी फसल लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया लेकिन पढ़ाई जाने तो खेती करनी है तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई जे ही देती है तो जी दुकान से ले लेके
0: का कह रहे लाला जी मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही
1: मर भी नहीं पढ़ भी जाने तो ही।
0: हाँ
1: पढ़ भी जाने तो खेती भी करनी है संग संगे देखो अब किसानी को गाँव वाले को काम है तो सब करनी है तो ही।
0: हाँ वो तो ये नहीं है कि लाला जी मैं जा कह रही तुम कहाँ डाल

0: लग रहा है, कहाँ डाला तुम्हें?
1: अरे भौजी दवाई तो मैंने मुलकंद अपनी बाजार से लिया लिया गए।
0: लाला जी मैं तो जहाँ से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम आई अच्छी हो जो उमदा को लाला जी अच्छी दवाई डाल रही हो। मैं जई वहाँ ने लाला जी की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी तो ऐसी बातें कर रही कौन, मेरे घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया तो तुम यानी क्या करा तो जुम्मन मैं तुम्हें देखे हूँ कैसी तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लाला जी तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी, ये तो जबकि देसी दवाई में इस्तेमाल करे थे। मैं तो बड़े वहां से आई थी, अरे मेरे लाला जी की अच्छी उमदा हो जाए, पढ़े लिखे है अच्छी दवाई ले आ तुम।
1: अरे भौजी अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय में दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिसिंगन में दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से खींच दो
0: रासायनिक
1: फिर
0: बाकी छत्तों
1: भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकरी रंग चोको हो जाए।
1: भौजी तो ऐसी बात कर रही जैसे तुम अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ माँ, मैं कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर है बनाऊ तो, और अपनी बैगन में वो चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी?
0: कहा क्या लाला जू काय को मस्करी कर रही तो मस्करी दिखा रही
1: और कई तरह के घर बना दवाई बनाओ हसी के लिए।
0: हाँ लाला जू मैं इनसे उमदा दवाई बनाते होंगी, रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भाई चला ही नहीं आए थे यार, देखो
2: चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उमदा लहलहा रही।
0: ना ये को कीड़ा लगो कीड़ा के लाने और जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला लेते हैं तो उनसे पूछत की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं, जो अपनी चीजें है प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो अब तो चला ही नहीं आए तो हारे,
0: चलो देखो अब देखो लाला जी जो तो लगो मे बैगन और जी अभी मेरे टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: कहा कह रहे भौजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जाए, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी। मैं तो घर बना था अपनी हिसाब,
1: लेकिन भौजी जी टपक जाएंगे मटका धरे जे का धरे चार पाँच।
0: कहा कह रहे लाला जी टपज्जा में लोटा धरे?
1: लोटा नहीं रे मटका धरे बट टपज्जा में।
0: हाओ लाला जी मैं मटकन से मैं मटका खाद बनाता हूँ।
1: मटका खाद?
0: हाओ
1: बाकी बनाता
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है, मैं अपनी सब देसी खाद डालता हूँ उनमें, जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
2: अच्छा
1: लेकिन मैंने जो सोची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सकते हैं तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घर ही बनाने और घर ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तुम्हें जरूर सीख भी आऊँ जो दवाई बना।
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग लेवे के लाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरू भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरू भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
0: नमस्कार।

0: दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
2: ब्रजनंदन पाल कैना से।
3: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
2: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा। जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
3: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
2: नहीं कर सकते।
3: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
2: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो छोड़ना पड़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
3: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
2: सुरेंद्र पाल कहना।
3: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
2: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, उड़द हो गए, चना हो गए, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
3: जी जैविक खेती के उत्पादन।
2: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
3: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
2: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी है, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
3: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
2: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
3: चलिए, बहुत अच्छा लगा लारा राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
4: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा नवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
3: अच्छा रही जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
4: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो पता है टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, उसमें निर्दोखल रहता है मतलब गोबर खाद।
3: अच्छा,
4: इससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
3: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
4: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, पर साल अगले कम दो, मतलब गोबर जो मान है गौ माता का ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है, फसल होने लगती है। सर,
3: अगर जैविक खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
4: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला है,
3: आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
4: मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
3: अच्छा
4: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल, बढ़िया तुम्हारी चलेगी उसकी।
3: धन्यवाद।
5: ब्रजकिशोर कुशवाहा।
3: अच्छा ब्रजकिशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
5: हमें पता नहीं है सर।
3: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
5: नहीं है जानकारी।
3: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
5: अब जी हमें पता नहीं है सर।
3: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
6: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
7: जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती, जीवन भर

पर्यावरण को शुद्ध बनावे सुलावई अरे लावई हाँ लावई लावे हमें देती जा जीव के खेती।

खुशहाल बनो रे अपनो देश, खुशहाल बनो रे अपनो देश। सो करो आ करो सब जैविक खेती, जा जैविक खेती।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
0: सर, मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती, अगर अगर इस क्षेत्र में देखा जाए सर, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे यहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थाई कृषि है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर, आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात करें और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, तो हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातु है, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है, तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
0: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है, क्योंकि अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हम नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
3: जी, इसके अनेक लाभ है और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी
0: जी।
3: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा
0: जी।
3: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव
2: होगी और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
0: जी सर,
2: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छी तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वर्षा और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
4: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हाँ श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207949। श्रोताओं आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था और जिसका सही जवाब देने वाले हैं टालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
4: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
5: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारे भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो देऊ करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते मतलब काया तुम बात कर रहे अपने साथियों
1: नहीं, नहीं हमारे भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जुड़त है वो
0: हाँ वो तुम्हारे
1: नहीं हमारे युवा साथी जो सोचत हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: और हमें नहीं जो मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले बोल गई ई बात को तुम्हें बुरा लगो हुज्जे सो तुम बीच में हमारी बात काटल लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होते है जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछत हैंगे के भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काहे से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथी ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो होंगे कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते हैं आप इतनो ज्ञान जब बोलत हैंगे तो ऐसा लगत के कि तुम बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेट हुए अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे

0: जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहता है वो, यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है, आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे, कैसे बहुत ज्यादा समय लगा थे ये चीज इनको सीखने में। यदि आप किसी के पास बैठे हो, उनका सवाल का है, उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो, तो नौकरियन में ये चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो, और तभी हम आगे बढ़ सके, तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: लेकिन जो तो बताओ कि अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे?
0: नहीं, हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी, वे का सलाह दे रहे हैं, इसमें सुना चाहेंगे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे। एक चीज हम एक बारे में बताना चाहते हैं,
1: फोन तो उठा लो पहला वो।
0: नहीं, हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन, हम अपने साथी उनको बताना चाहते हैं कि व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो, ये बहुत बड़ी चीज रहती है। जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में जो सीख मिलत है, उनके जो अनुभव रहते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रही है।
1: अब फोन कटेगा, आप काय में से उठा रहे हैं?
0: चलो, हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैं, चलो उनसे बात का आपन कर लेते हैं, तो उनको समय पर आएंगे।
1: तो बात तो नहीं करें, आप खुद आता।
0: चलो आप ही कर लेते, रूपा जी को फोन है, आप ही बात।
1: हेलो, नमस्ते।
2: रूपा रानीपुरा से, जिला टीकमगढ़ से। अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है, पिक्चर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है, इसमें कपड़ा भी आए हुए हैं, तो कपड़ा की सिलाई चल रही है, सिलाई सीखेंगे अब।
1: अच्छा, यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं?
2: हाँ।
1: तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: हाँ, जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ से पिक्चर में सेंटर सिलाई खुला हुआ था, वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा, वहाँ से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला, तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर दो पैसे भी मिलने लगे
1: जी,
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
1: जी। तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
2: हाँ, वैसे गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
1: जी,
2: उनसे हमने संपर्क किया, तो फिर उन्होंने उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा, कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के, फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गांव में आ गए, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है
1: जी। तो आपने जब अप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा।
1: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
2: नहीं।
1: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठे ही खाली घर में।
1: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
2: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर न जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर न कहीं जाना पड़े।
1: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
2: वैसा हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
1: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ खर्चे होते, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
2: हाँ, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
1: अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी।
2: हाँ,
1: बिल्कुल,
2: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
1: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप

0: करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी तो। ऐसी पुराने फीस थी ना, उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे हैं खान के खान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे। जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे, उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी, कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें वो लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं। झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़कियां?
1: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाली भी हैं, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें
1: आगे? ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करें, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो, कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे भी।
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता। जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं।
0: जी,
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी जी,
1: कल कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते,
1: नहीं ले सकते ना। फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज, तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने की ये चीज क्या है,
0: जी
1: तो हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
1: नहीं किया अभी, नहीं नहीं 1 महीने में नहीं हमने किया।
0: जी,
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
0: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं?
1: हाँ, वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
0: ये चीजें आप बना लेती हैं?
1: हाँ, यही 2-3 चीजें बना लेते हैं।
0: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
0: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा के लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाए, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
0: अच्छा,
1: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हूँ उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे? आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता, ताकि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे न बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता। ये सबको भी आप बता दो, आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे हो मैं
0: जी,
1: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है? इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छे जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
0: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं बस ये बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ ताकि हम दो पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़ के।
0: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
1: कर सकते हैं, लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
0: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं,
1: कर सकते हैं, इसीलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है वर्षा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए आगे, यही की यही रह जाए, सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
0: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।
1: जी
0: रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: उनके लिए बस कोशिश करते रहे, हार न माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे न हटे, लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
0: जी
1: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
0: जी बिल्कुल रूपा जी,
1: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, ये सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
0: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दे ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छी बात, धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: कहावार साहब, तुम तो इतनी नोनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें दिखा पहले से बिल्कुल पतो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
0: हम
2: सोच ही रहते हम हमें आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके ऐसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होतेगी कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उन्होंने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई हैं और उन्होंने किस

0: किसान सिलाई को काम सीख के आज भी अपना परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा सबसे बड़ी बात पता का हैगी जा हैगी कि अपन हो रहे सीख तो ली थे मतलब जैसे कहता हूँ सुनी क्या रे वो जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना सीख भी वो थे ना नई शुरुआत में तना एक जावे को चस्का लगो रहा थे वो चले तो जा सीख भी लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकते कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाते हैं। तो काय की रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी। लेकिन अगर बात करें कि उनको कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम करने लगी हैंगी। तो केवी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उनको जरूर सीखो। क्या आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो महत्वपूर्ण हतो तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम दूसरो ब्यूटी पार्लर तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छो लगत है तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काय अटकती हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती जैसे अचार बरी को काम है अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जे मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हैं और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
0: अरे ज्ञान की देवी अब हाँ? तनक रुक जाओ और हमारे साथियों को तनक सांस लेने दो और जो लोकगीत सुनन दो कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे
1: हाँ, मतलब
0: एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैं और अपन सुनवाते हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सौ गजल को अपन गजल को सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें ही दे सका थोगे कहेगा हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे साथ ही हम बस पूछ वो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे कैसे है जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे तो अपन ये चीजें आपको बताते हैं जो बातें

0: आपको बता देंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सएप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है वो जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है वो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर आपको लग रहा है वो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं।
1: बिल्कुल इस प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने है तो उनके लाने हमारा नंबर जो है वो
0: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
1: अरे मनीष भाई सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में काहे नहीं बताओ?
0: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास
1: जानत है?
0: नहीं नहीं जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, वो जहाँ पर रेडियो नहीं पहुँच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से वहाँ पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहाँ भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाना है वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाको डाउनलोड करो और चाँद इतने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चाँद उन छिड़िया बैठ के सुन सकते हैं और अपनी ज्ञान की बात उनको सुन सकते हैं।
1: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने, आप डाउनलोड जरूर करबे अब काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसे शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा है कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने
0: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार

बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

Yeah.

0: गए हो हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। राज से मिला आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको अपना

0: जिला आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक, पंचायत से

0: मान सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक, घर से पंचायत तक, हम सबको मिलकर जाना है। आओ बहनों, हम सबको

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत।
1: गांव में किते किते और का काम उज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: 100 साल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
5: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
6: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे, तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है, और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाएं तैयार करते हैं, इसमें अब जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पे कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, यह सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहां पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को, जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है।
5: बिल्कुल।
6: अगर आप देश के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजना ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के। तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत।
1: गांव में किते किते और का काम उच्चे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। अब तो दोस्तों समझ गए होंगे, अब एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी वाल इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी, अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम

हम देखेंगे। आप नाली का अगर बात की जाए, नाली का काम कि ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है, ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं। जब भी ग्राम सभा होती, ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, साहब हमारे घर में शौचालय बनाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425147726। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और बड़ी खुशी होती है कि हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम को बड़े चाह से और मन लगाकर सुनते हैं। और कुछ दिन पहले एक हमारे किसान ने हमसे अनुरोध किया था कि हमारे सभी साथियों को, किसान साथियों को मौसम आधारित जानकारी, क्योंकि मौसम आधारित जानकारी तो हम देते हैं, पूरे भारत में क्या स्थिति है पानी को लेकर, क्या मौसम कह रहा है उसको लेकर जानकारी चाहिए थी। तो हम इस आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे श्रोता साथियों की पसंद पर इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं। मौसम आधारित जानकारियाँ, क्या तापमान होगा पूरे भारत में, किन किन हिस्सों में क्या तापमान रहेगा, साथ साथ में वायु का जो संकेत है क्या रहेगा उस पर भी बातचीत होगी। साथ में हमारे किसान साथी इस बरसात के मौसम में, चूंकि बहुत सारे किसान साथी हमारे रह भी गए होंगे और जिन्होंने बुवाई भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लगभग एक महीने से ऊपर हो गया है यहाँ पर पानी यानी बरसात होते होते, और हमारे किसान साथी चूंकि बरसात थोड़ी खुलती है इसके बाद मूसलाधार बारिश होती है, जिस कारण से हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी इस मौसम की बुवाई नहीं कर पाई है। लेकिन तैयार रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम जो रबी की फसल की तैयारी करते हैं उसके लिए आपको वक्त मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा और अच्छी तरीके से उस खेती को करिएगा। जिन साथियों ने इस बार इस मौसम

0: साथ में हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं। ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक हम भेज रहे हैं, यानी बनाकर हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा क्या भारत का मौसम भारत में कैसा रहेगा, अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा, जानते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: अभी मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या संकेत है, वायु गुणवत्ता कैसी है, खेती के साथ जो कुछ जरूरी बातें, लेकिन शुरुआत करेंगे पांच बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से पांच बड़ी खबरें क्या हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पूर्व राजस्थान की बात करते हैं, कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद बताई गई है, तो पूर्व राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ी खबर। पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, तो यहां पर भी सावधानी बरतें, बड़ी खबर। मौसम के लिहाज से बात करें गुजरात की, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो बरसात को लेकर यहां संकेत जारी किए गए हैं, बड़ी खबर। मौसम के लिहाज से बाद उत्तराखंड की कर लें, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है, तो उत्तराखंड में भी मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तटीय कर्नाटक की बात करते हैं, तो कहीं कहीं झमाझम बारिश का अनुमान बताया गया है, यहां पर भी मौसम में बड़ा परिवर्तन है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, और हिसाब से बड़ी खबर मौसम के लिहाज से हुई पांच आज की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मौसम के साथ कैसे आपको अलर्ट रहना है, यानी देश के तमाम हिस्सों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां सावधानी बरतनी है, कहां आपको चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको कैसे अलर्ट रहना है, ये सारी जानकारी लेंगे अपनी।
2: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बेहद भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज से काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में जल भराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, तेज हवाओं से नुकसान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से अनुरोध है कि सतर्कता बरतें और यथासंभव घरों में ही रहें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी से भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज से काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में मौसम के तीव्र बदलाव से प्रभावित होने की आशंका है, ऐसे में जरूरी एहतियात बरतना आवश्यक है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक की स्थिति रह सकती है। वहीं रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी, कृपया सुरक्षित रहें, धन्यवाद।
1: तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, और जिन क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, वहां पर खास कर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, तो जान लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान और जानते हैं कि देश के अलग हिस्सों में किस प्रकार के संकेत जारी किए गए, अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया, जान लेते हैं क्या संकेत है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उत्तराखंड की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं, साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो उसमें भी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें गांधी पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा की बात करें, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं तो यहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं, साथ ही साथ अंडमान निकोबार की बात करें यहां पर भी अनेक जगह के बरसात के संकेत हैं। केरल, तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। रायलसीमा में कई जगह बरसात के संकेत आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत बताए गए हैं। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और मराठवाड़ा की, तो यहां पर आप देखेंगे अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात

मध्य महाराष्ट्र को गोल गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। संचार बात कर लें पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से यानी मैदानी भागों भी कुछ प्रकार से बरसात के संकेत देखने को मिलेंगे। बात करें पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है, लद्दाख ले जम्मू कश्मीर श्रीनगर लेह की बात करें कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली की बात करें कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें यहां पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई इलाकों में बरसात दर्ज की गई। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। बिहार झारखंड गांगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा की बात करें तो पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं कई जगहों पर यानी अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा भीतरी उत्तर कर्नाटक भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु पुडुचेरी केरल की बात करें या फिर बात करें तटीय कर्नाटक की तो दक्षिण भारत के भी तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। बाद मैदानी भाग की अगर करें तो छत्तीसगढ़ पूर्वी मध्यप्रदेश पश्चिमी मध्यप्रदेश में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। विदर्भ में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात दर्ज की गई। गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में बरसात दर्ज की गई है। दमन नदी कोंकण गोवा की बात करें तो मैदानी भाग के तमाम हिस्सों में भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर बहुत तेज बरसात देखने को मिली है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई और अहम महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें देखते रहें मौसम खबर।

आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम का क्या असर पड़ रहा है तापमान पर, यानी तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, अधिकतम तापमान के क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, सारी जानकारी आपको देंगे हम तापमान के हाल के सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान के कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें उत्तराखंड की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान उत्तराखंड में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति निकलकर आई 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर की बात करें जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, 39 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में देखने को मिला है। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है, न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर देखने को मिला। पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। बात कर लेते हैं बिहार की जहां पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही साथ बात कर रहे हैं हम गुजरात की, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं यहां की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान का इस प्रकार से देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग की अगर हम बात करें तो देश का सबसे कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया 18.2 डिग्री सेल्सियस के साथ, देश का सबसे कम तापमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखने को मिला। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक नजर उस पर।

अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई, यहां गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर

आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं देश के तमाम मुख्य राज्यों और मुख्य शहरों में जो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले चार दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले चार दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि लद्दाख में देश के आने वाले लद्दाख के लोग आने वाले चार दिन मौसम कैसा रहेगा। रविवार की बात करें कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह धूप खिलने के संकेत हैं। सोमवार को मौसम में तब्दीली है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार बुधवार फिर से मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम स्थिति में तापमान देखने को मिलेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के तीन दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को फिर से बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें धर्मशाला में तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहां पर एक जैसे मौसम देखने को मिलेगा। चारों दिन यहां पर बादल छाए रहने के संकेत हैं और कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी। पंजाब के अमृतसर के अंदर आने वाले चार दिनों में मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बात करते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री की, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान है। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी उत्तराखंड के गंगोत्री में। इस प्रकार से तापमान और मौसम का हाल देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के कई इलाकों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार की बात करें तो यहां पर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का हाल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं असम के काजीरंगा की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के तीन दिन अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बुधवार को बात करें तो यहां पर कुछ तब्दीली देखने को रही है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास बनती नजर आएगी। फिलहाल तीन दिन यहां पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, बात करें तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती नजर आएगी। आने वाले चार दिनों के लिहाज से रामेश्वर में मौसम का हाल तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारत के केरल की, जहां पर मुन्नार की अगर हम बात करें तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा बरसात के साथ। न्यूनतम तापमान की बात

यहां पर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। आने वाले 4 दिन बरसात से भरे रहेंगे। मुन्नार में भी इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान यहां संकेत ऐसे मिल रहे हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें चित्रकूट में अधिकतम तापमान की, तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय खेत में जो लगी हुई फसलें उनकी देखभाल बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कई जगह पर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। ऐसे में किन तरीकों में आपको बदलाव करना है, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं खेती किसान।

भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सतपुड़ा के पठारी क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जड़ों को नुकसान न हो। इसके अलावा यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों और कीटों की निगरानी करें। इसके साथ ही बेलों को सहारा दें ताकि सड़न और खराबी न हो। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, अरहर, कपास और सब्जियों के खेतों में जल निकासी सुनिश्चित करें और साफ मौसम में निराई करें। जाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में अगेती और पौध अवस्था वाली खरीफ फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और साफ मौसम में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई करें। गिर्द क्षेत्र में फिलहाल बाजरे की बुवाई को टाल दें। इसके अलावा यहाँ तैयार सब्जियों और फलों की समय से तुड़ाई करें ताकि खराबी न हो। यही सोयाबीन, अरहर और धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन जैसी फसलें विकास अवस्था में हैं। इनके लिए जल भराव से बचाव करें और हवा से गिरने वाली फसलों जैसे केले और सब्जियों को सहारा दें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते धान की नर्सरी की बुवाई को रोकें और सोयाबीन, मक्का के खेतों में जल भराव न होने दें। मालवा के पठारी क्षेत्र में खेतों में जल निकासी बनाए रखें और मक्का की फसल की निगरानी करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से धान की नर्सरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान नर्सरी से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यही सोयाबीन की बुवाई भारी बारिश थमने के बाद करें। विंध्य के पठारी इलाके में सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें और कद्दू वर्गीय फसलों की बेलों को सहारा दें।

0: आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल की बुआई करना बेहद आवश्यक होता है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। इस समय की बात करें तो इसमें आप बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। किन प्रकार से आपको आगे बढ़ना है इसकी खेती में, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए।
1: ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें, खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की एक किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं।

सब्जियों की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहले सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें।

से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों के मौसम के बारे में जानकारी को सुना, समझा और हमारे किसान साथियों को जानकारी भी हुई है कि किस जगह खासतौर पर पर्यटक स्थल जहां पर है उसका भी हमने मौसम आधारित जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है। अब बुंदेलखंड की बात करें, क्योंकि अलग अलग हिस्सों की जानकारी थी, अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों की जानकारी थी, अब आपको बुंदेलखंड क्षेत्र और खास तौर पर टीकमगढ़ की जो हमें रिपोर्ट मिलती है, मौसम आधारित जानकारी जो मिलती है उसको हम आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और तथा कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों, दलहनी और तिलहनी फसलों में जल भराव की समस्या हो सकती है, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई बारिश के समय घर के अंदर ही रहें, यदि संभव हो तो खेतों में जाने से बचें, सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे शरण न लें। किसान भाई धान की फसल में खरपतवार निकालने का कार्य शुरू कर दें, इसके पश्चात संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का छिड़काव अवश्य करें। मिर्च और टमाटर की फसल में विषाणु रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, किसान भाई फसल का निरीक्षण करें, ग्रसित पौधे को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है, जिससे पान की फसल में फुट रॉट रोग लग सकता है। इसके बचाव के लिए किसान भाई पान के बरेचा के आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। किसान भाई नए फल बाग लगाने के पूर्व में खोदे गए गड्ढों में पौधे की रोपाई का कार्य शुरू कर देवे। अरबी में कंद गलन रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई कंद सड़न के विरुद्ध फसल की निगरानी का कार्य शुरू कर देवे। किसान भाई बेल की कटाई छटाई का पश्चात इसमें निकलने वाली नई शाखाओं में छल्ला विधि से कलम बांधे। बारिश का पानी पशुशाला में जमा होने ना दें, जानवरों को सूखी जगह पर बांधें, पशुशाला की नियमित रूप से सफाई करें, सप्ताह में 2 बार पानी की टंकी में चूना डालें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई गाय व भैंस के छोटे बछड़ों को सूखे स्थान पर बांधें। तो ये थी हमारी आज की मौसम आधारित जानकारी जो हमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से दी जा रही थी और जो हमने पूरे भारत की आपको मौसम आधारित जानकारियां और बहुत सारी जानकारी है इस कार्यक्रम के माध्यम से दी, उसका हमें सहयोग मिला है टीडी किसान चैनल से, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीना अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन बढ़िया बढ़िया सी गारियन खो और इन गारियन को अपन आनंद ले हैं। जी हाँ दोस्तों, काय के जब ब्याह शादियन को मौसम आ जाता और ऐसे मौसम पे महिलाएं जब गारी गावती हैं तो देखो कितनो सुहानो लगत मड़वा की तरह। और जब मड़वा की तरह गारी हो तो अपने गांव पूरा मोहल्ला के लोग बाग सुनत हैं और वो गारी विधा में जो चीज दर्शाई जात गाई जात बा कितनी सुहानी लगत। सो दोस्तों, आज आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली खो। सो आओ दोस्तों, देर ना करत भाई सुनत है बढ़िया सी प्यारी सी गारी खो और लेते हैं इको आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, घर होती आदर कर लेती। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, इगारी को आनंद लो। इगारी खूं गा रहे थे हर प्रसाद कुशवाहा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप एक क्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गारी इनखों।

देखो दोस्तों, जब कितनी बढ़िया गाड़ी अपन सब जन ने सुनी है, ई गाड़ी को आनंद लो है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे प्रताप सिंह यादव जी और संगे गा रही थी रेखा शर्मा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल, बिटिया दइयो तो धन दइयो, राम गरीबी ऐसी दइयो ना। देखो दोस्तों, कितनों प्यारी जापन ने गारी सुनी, इगारी को आनंद लाओ है। इगारी खूं गा रही थी उमा प्रजापति जी। अब दोस्तों ये गारी के संगे संगे आओ सुन लेते हैं अगले साथियों की और गाई भाई गारियन खूं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में, और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली।

बिल्कुल साथियों, हमने खबर ना पाई हो सजना कब के आए। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सबजन ने सुनी है, इको आनंद लव है। ई गारी खो गारी हती सुशीला देवी जी। अब आओ दोस्तों एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन खो।

बिल्कुल, तुम बड़े प्रेम से आइयो समझी हमें भूलना जइयो। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनों ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। ई गारी को गा रहे थे भैया गंगाराम कुशवाहा जी। अब दोस्तों गंगाराम भैया जी की गारी के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से अपने दोस्त माता दिन भैया को जाबे को समय होगा है, सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर मुलाकात ए कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।